सत सों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नूं बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ां दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ां दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने और इन्हां कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा ने जितना पसारा वड्डा हो जांदा है और इस नाल मानसिक तनाव वध जांदा है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते ते शायद कोई कोई रोगी होवे पर मानसिक तल ते ते सतगुरु कहिंदे ने जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरुदेव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहिंदे ने बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद विच विकार पैदा करे ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद विच बेरसी नूं पैदा कर देवे और शरीर नूं रोगी कर देवे सतगुरु उस तों जो है वरजदे ने। इह गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने कोई वाई प्रधान शरीर है कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक स्वभाव नूं वेख के खाणियां प्रति जो सुचेत हो जांदा है उह शरीरक पीड़ा तो बच जांदा है मानसिक विकार तो बच जांदा है और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जांदी है। पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे पहनना सिर्फ नुमाइश होवे पहनना अपनी बिरती नूं भी बाहर मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नूं भी अपनी तरफ खिंचे ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नूं जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानू वरजदे ने बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था दा जिक्र करदे ने जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है और यही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाव ने चार ठहराव ने ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है जिस दे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार रहाव ने। चार रहावां दे भाव चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने प्रथम शरीर और शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे तो फिर पहनना और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नूं नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकती नूं भड़काण दा मसला खड़ा होवे साहिब कहिंदे नहीं ए भी खुआरियां नूं जन्म देंदा है।
खान पीन पहनन दे मसले तो जैसे मनुख निश्चिंत हुंदा है तो फिर मन दी दुनिया सामने आउंदी है। कहिंदे ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उन्हां दियां शरीरक लोड़ां दी पूर्ति कर देंदी है, पर ए जो मन है मनुख दा ए ऐसा है कि शरीरक लोड़ां दी पूर्ति हो जाए और जितनी ज्यादा हो जाए ए उतना ही भयंकर रूप विच मंग करन लग पैंदा है। इत्थे मनुखी मन ने बड़े भुलेखे खादे ने और मनुख ने बड़े संपन्न तरह दे मनोरंजन दे साधना नु जन्म दिता है। जिहड़े जिहड़े देश जितने अमीर ने, जिहड़े जिहड़े घराने जितने ज्यादा संपन्न ने, देखे उत्थे मानसिक बेचैनी उतनी ज्यादा है। सतगुरु आप भी कहंदे ने कि वडे वडे जो दीसे लोग किनको व्यापे चिंता रोग। महाराज कहंदे ने दुनिया दे तमाम वड्डे मनुखां ते निगाह मारनी। वड्डे मनुख कौन जिन्हां कोल धन संपदा ज्यादा है। को न वड़ा माया वड्याई, गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी जो है करदी है, ए मनुख वड्डा नहीं, ए वडपणा धन ते खड़ा है, ए वडपणा संपदा ते खड़ा है, ए वडपणा प्रभुता ते खड़ा है, सता ते खड़ा है। और जितनी ज्यादा धन संपदा है उतनी ज्यादा प्रभुता है, जितनी ज्यादा सता है उतनी ज्यादा प्रभुता है, और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज कहंदे ने उतना ही वड्डा है, और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जो दीसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। इसनू एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोलिया, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे भरमंता। जिस को ले धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है, पर जिथे लोड़ जोगा भी नहीं उथे भटकना है, उथे मन विच भरम ने और उथे बहुत धावना है, उथे बहुत भटकना है। एक थां ते भटकना है और उस भटकन विच भुलना ने, इस वास्ते आम कह दिता है कि गुनाह गरीबी तो जन्म लेंदे ने, गरीबी मुफलसी गुनाहां दी जननी है, गुनाहां दी मां है। मजबूरियां मनुख नूं रसातल दे चले जांदियां, धरातल दे जह लै जांदियां ने। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जिथे लोड़ां दी पूर्ति नहीं हो रही उथे ते भटकना है, और जिथे लोड़ां दी पूर्ति तो भी अधिक है उथे चिंता है, बड़ी भयंकर जो है चिंता है। जितने संपन्न देश ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने संपन्न घराने ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने ज्यादा चिंतातुर ने उत्थे उतने ज्यादा मनोरंजन दे साधन मुहैया किते जांदे ने, उपलब्ध किते जांदे ने मनोरंजन। गरीब अजे जिस दियां तन दियां ही लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, अजे तन दा ही मसला हल नहीं होया, अजे तन ते चीथड़ा नहीं है, अजे पेट दे च रोटी नहीं है, इनू मनोरंजन नहीं चाहिदे। शरीर सब तो अगे है, अजे शरीर दा मसला हल नहीं होया तो मन पिछे खड़ा है, मन नंबर दो ते खड़ा है। जिस वक्त भारत संपन्न सी और ईरानिया अफगानिया ने तुर्की लोगा ने इनू सोने दी चिड़िया आख्या, उस जमाने च इस देश दे घर घर दे संत पैदा हो रहे सन, देवते पैदा हो रहे सन, देवियां पैदा हो रही सन, धन संपदा बहुत सी, शरीर दा मसला हल हो गया सी, मन दे मसले नू परमात्मा दे नाम नाल हल कर रहे सन, प्रभु चिंतन नाल हल कर रहे सन। चाहे थे राजकुमार सिद्धार्थ होवे चाहे महावीर होन, आखिर राजघरानिया दे फरजंद सन, इन्होंने भी अपने मानसिक मसले प्रभु चिंतन नाल हल किते, आत्म अभ्यास नाल जो है हल किते। करीबन करीबन इस देश दे राजघरानिया दे चों धर्म दी सुगंध फैली, धनाढ़ मनुख प्रभु दे मार्ग ते चले, और जद धनाढ़ चल पैन सताधारी चल पैन
तो दूसरा वर्ग उन्होंने पिछे चल पैंदा है। स्वाभाविक है, अक्सर छोटा वड्डे दी नकल करता है, निर्धन धनवान दी रीस करता है। तो जो थोड़े जिया भी तलते पछड़े सन, दरम्याने सन, उन्होंने राजघरान्या दे ए जो राजकुमार सन इन्हां दी नकल की थी, राजियां दी नकल की थी, राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश दे ऐसी हवा चली, घर घर दिच देवी, घर घर दिच देवता, गली गली दिच संत, और अज तक वो पुरानी हवा दे कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहंदे ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवतावां दा देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरां दा देश है, जोगियां दा देश है, आत्म ज्ञानियां दा देश है। पर ए आत्म ज्ञानियां दा देश सी, अज नहीं। ए ऋषि मुनियां दा घराना सी, अज नहीं। संपन्न लोगां ने अपना पूरा समा, अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास दे खर्च की थी, तो सहजे सहजे की होया, धन दी फिक्र ना की थी, संपदा दी फिक्र ना की थी। संत पैदा होंदे गए, ऋषि मुनि पैदा होंदे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंदे गए, तो धन संपदा दी ते फिक्र ना की थी, मुफलसी भी पैदा होंदी गई, और मुफलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखदे आं कि हिंदुस्तान अज उन्हां देशां दी तरफ निगाह करदा है जिथे संपन्नता है, ते जिथे संपन्नता आ गई है वो आत्म अभ्यास लई हिंदुस्तान दे दरवाजे खटखटा रहे ने, वो योगियां दे आश्रम लभ रहे ने, वो आत्म अभ्यास दे केंद्र लभ रहे ने। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द दी उत्थे महिमा वध गई है, योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तरंग वध गई है, लेकिन धन संपदा दी तरंग ते उमंग हिंदुस्तान विच वध गई है। अज धन दी खातर इस देश विच धर्म नूं छोड़िया जा सकदा है, पर उस देश विच ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नूं छोड़िया जा सकदा है। संपन्न घरानियां दे बच्चे हिप्पी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नूं, हर तरह दे सुख नूं, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्रभु चाहिए, आत्म प्रकाश चाहिए। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे, मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और इदा मसला है खाना पीना पहनना। पर ए संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। ए पहनना अगर संजम दे च ना होवे, मर्यादा दे च ना होवे, तो ए भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। और तन दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे, तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया, मनोरंजन मन दी लोड़ है। नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनियां, इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानियां दे नवे तो नवे पैदा हो रहे ने। लेकिन मन दी एक अपनी एक अवस्था है, जिस चीज नू एक दफा वेख लवे उनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करता, मन अगे जांदा है, मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ए रुकदा नहीं, ए लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है। रंग पुराने हो जांदे ने, रूप पुराने हो जांदे ने, महफिलां पुराणियां हो जांदियां ने, तस्वीरां पुराणियां हो जांदियां ने, कहानियां पुराणियां हो जांदियां ने, संगीत दियां धुनां पुराणियां हो जांदियां ने, माहौल पुराना हो जांदा है। अज देखदे आं संपन्न घर जो है देशां विच ते कोई वध तों वध 2 साल ही मकान विच रहिंदा है, तीजे साल मकान बदल देंदा है।
नौबत इत्थे तक आ गई परिवार बदलने ने, पति बदलना है, पत्नी बदलनी है, पर हुण कौन दसे ए जो मनोरंजन है ए मन दी मंग नहीं, ए ते इस तरह है जैसे रोंदे हुए बच्चे नु छणकणा दे के वक्ती तौर ते बुलाया जा सकदा है, पर उते दूध लई रो रहा है, उते मां लई रो रहा है। वक्ती तौर ते ए छणकणा दे के बुलाया जा सकदा है, परचाया जा सकदा है, लेकिन फिर भी उसने छणकणा सुट देना है, हथ मां दी तरफ पसार

0: धन गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग दे पावन पवित्र वाक ते चौथे रहाओ दे जो मुख गल साडे सामने रखते ने खान पीन का भी मसला हल हो जाए, पहनण का मसला भी हल हो जाए, सारे मनोरंजन दे साधन भी प्राप्त होन, लेकिन प्राणा विच इक प्यास रह जांदी है परिवार दी। मेरा परिवार भी होवे, मनुख समाजिक प्राणी है, तनहा नहीं रह सकदा, कल्ला नहीं रह सकदा। पशुआं दी कोई समाजिक जिंदगी नहीं है, और पशु अकल्ले तनहा जिंदा रह सकदे ने। और अक्सर देखा गया बेशतर पशु तनहाई दिच रह जांदे ने, और तनहाई उना लई कोई तनहाई नहीं, मन दी दुनिया ही नहीं है, सिर्फ तन दी दुनिया है, लोड़ां दी पूर्ति हो गई, मस्त होके सौ जांदे ने। मनुख मानसिक तल ते जीण वाला है और समाजिक प्राणी है, इसनू परिवार भी चाहिदा है, और परिवार विच मां बाप पत्नी तिया पुत्र भरा मित्र, और इस तरीके नाल तीन प्रणालियां समाजिक रिश्तियां दियां गिणिया गईयां ने, दादकियां दे रिश्ते, नानकियां दे रिश्ते, सौरियां दे रिश्ते। तीन रिश्ते चलदे ने एक पिता तो, एक मां तो, एक पत्नी तो। पत्नी नूं एक पासे कर दईए सौरियां दे कोई रिश्ते नहीं, मां नूं एक पासे कर दईए नानिहाल बचदा ही नहीं, पिता नूं एक पासे कर दईए दादकियां दी प्रणाली चलदी ही नहीं। समाजिक रिश्तियां दियां ए तीन शाखावां ने, दादके नानके सौरे। तो चूंकि मनुख समाजिक प्राणी है, इनू दादकियां दे रिश्ते चाहिदे ने, इनू नानकियां दे रिश्ते चाहिदे ने, इनू सौरियां दे रिश्ते चाहिदे ने। मनुख दे कोल बहुत सारे साजो समान दे माण दे नाल नाल रिश्तियां दे भी माण हुंदा है, रिश्तेदारां दा भी माण हुंदा है, संबंधियां दा भी माण हुंदा है। इह गल वखरी है कि इन्हां रिश्तियां विचों किहड़ा व्यक्ति उसनूं अधिक प्यारा है, ज्यादा प्यारा है, पर फिर भी इन्हां तीन रिश्तियां दी प्रणालियां दी अपनी प्रधानता मनुखी जगत विच बनी आई है और है। नानके दादके सौरे। सिख जगत दे महान दार्शनिक संत भाई साहब भाई गुरदास जी वो कहने हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरे रिश्ते तो सारे रिश्ते कुर्बान करदा, सदके करदा। बड़े सोहने ढंग नाल उन्होंने एक कवित विच इन्हां रिश्तियां दी गिणती कीती है, और अपना मनोवेग अपना मनोभाव प्रदर्शित कीता है। नहीं ददसार पिता पितामह पर पितामह, सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। पिता पिता दा पिता दादा, फिर उसका पिता परदादा, फिर उसका पिता लकड़ दादा। इस तरीके नाल ए दादके घरानिया दे रिश्ते भरा ने पुत्र ने, ए सारे दा सारा दादका कहलांदा है। आप कहने नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा, सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। नहीं ननसार माता पर माता, वृद्ध माता मामी मामू मासी मौसा, विविध विख्याता है। नानकियां दे सारे रिश्ते चलदे ने मां तो, मां मां दी मां नानी, फिर उसकी मां प्रणानी, मामे मामिया मासी इत्यादक मासड़ इत्यादक, ये सारे रिश्ते मां करके ने। भाई जी कहंदे ने नहीं ननसार माता पर माता, वृद्ध माता मामी मामू मासी मौसा, विविध विख्याता है। नहीं ससुरार सास ससुर सारो ओ सारी, नहीं ब्रितीसर जाचक ओ ना दाता है। पत्नी तो जड़े रिश्ते चलते ने, साला है, साली है, सस है, सौरा है, ये सारे पत्नी तो चल देने। मैं फिर अर्ज करा, पिता नु एक पासे करिए, दादकियां दी प्रणाली खत्म, मां नहीं तो नानकियां दा पसारा खत्म, पत्नी एक पासे तो कौन साला कौन साली, कौन सस ते कौन सौरा, ए रिश्तियां दी प्रणाली टुट जांदी है। खड़ी है सौरियां दी प्रणाली पत्नी ते, खड़िया है दादकियां दा संसार पिता ते, नानकियां दी दुनिया मां ते। भाई साहब भाई गुरदास जी चौथी पंक्ति देच अपना मनोभाव इंज प्रदर्शित कर देने, नहीं ससुरार सास सुसर सारो ओ सारी, नहीं ब्रितीसर जाचक ओ न दाता है, असन बसन धन धाम काहू में न देखियो, जैसे गुरसिख साध संगत को नाता है। गुरु दी संगत च बैठ के सुरत नू जड़ा प्रभु नाल जोड़ लेना है, ए जो रिश्ता है ए जो नाता है, भाई साहब कहते दुनिया च कोई ऐसा नाता नहीं, पर इस दी तह दे च थोड़ा ते जो है जाना पेगा। आखिर ए संबंध परिपूर्ण परमात्मा दे बनाए हुए ने। तियां पूत सब हरके किए, सबना को संबंध कर दिए, फिर मात पिता सुत बंधप भाई, नानक हो आपार ब्रह्म सहाई। यतीन कह देने असी उसनों जिसने मां नहीं जिस दिए पिता नहीं, यतीम है यतीम है, पति नहीं तो उस पत्नी नु बेवा कह दिता जाता है, और पत्नी नहीं तो उसका पति होना खत्म हो जाता है, इंसान रह जाता है मनुख रह जाता है, हुण ये पति नहीं है, पत्नी करके ही थी पति सी। ये रिश्ते ये खास वजूद नु इस खास अवस्था नू एक खास मनोवेग नू जन्म देंदे ने, और बच्चा ही नहीं ते मां किथे। कदी बगौर मुताला करिए, सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया मां दा भी जन्म होया है, सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया प्यो दा भी जन्म होया है। कहिंदे आ बच्चा पैदा होया, बच्चा पैदा होया है, पर अधूरी गल करदे आ, नहीं कहना चाहिदा मां दा जन्म होया, मां दा जन्म होया, अधूरी गल करदे आ, लड़का पैदा होया है, लड़का पैदा होया है, पर कह देना चाहिदा पिता पैदा होया है, पिता पैदा होया है। इत्थे एक दूसरे दे उत्ते सारे रिश्ते खड़े ने, सारे जो है संबंध खड़े ने। आध्यात्मक संबंधा दी खान है गुरु, गुरु नू हटा दईए, ना कोई संत ना कोई ऋषि ना कोई मुनि ना कोई जोगी ना कोई पीर ना ही कोई पैगंबर ना ही कोई अवतार ना ही कोई भगत, ये सारे रुतबे गुरु तो जन्म देने। एक पत्नी नू हटा दईए शाखावां सारियां ही खत्म हो जाणगियां, यही एक रिश्ता है पति पत्नी दा, जो दाद के अगां चल के दाद के नानके ते सौरियां नू जन्म देंदा है। एक रिश्ता नहीं तो मनुखी वैण खत्म हो जांदा है, और मनुखी वैण खत्म हो गया तो किथे दाद के किथे सौरे और किथे नानके, तो जिथे अध्यात्मक रिश्तियां दा केंद्र गुरु है, समाजिक रिश्तियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। इस एक रिश्ते तो तमाम समाजिक रिश्तियां दा जन्म होंदा है, खला पैदा हो जांदा है उस मनुख दी जिंदगी च, चाहे स्त्री है ते चाहे पुरुष है। अगर वो सिर्फ स्त्री रह गई है पत्नी नहीं बेवा हो गई है, अगर वो सिर्फ पुरुष रह गया है पति नहीं, तो उसकी दुनिया दे च उसके अनुभव दे च फौरन ये गल आ जांदी है, किथे दादके किथे सौरे किथे नानके, सब रिश्तियां दराड़ पै जांदी है, और ये दराड़ा कई दफा ओदी अखां दे सामने इतनियां ही वधदियां ने ढेरी हो जांदियां ने, और उस दिन पता चलदा है इत्थे इक करके ही सारियां रिश्तियां दियां दीवारां खड़ियां सन, सारे रिश्तियां दे महल खड़े सन, इत्थे इक दे टुटण नाल सारियां दराड़ां पै गईयां, جیسے بنیاد دے دراڑ پی جائے، بنیاد ایک پاسے ہو جائے تو دھراتل ہو جاندہ ہے محل، ہو بہو پتی ایک پاسے ہو جائے، پتنی ایک پاسے ہو گئی تو داد کے سورے نانکیاں دا محل دھراتل ہو جاندہ ہے، دراڑا پی جاندی ہیں، سب رشتے ڈھیر ڈھیری ہو جاندے نے۔ اور اے دو رشتے نے جنہوں نے میری ضمیر نے کدی خون دا رشتہ نہیں منیا، سکھ تے گرو دا رشتہ، پتی تے پتنی دا رشتہ۔ اور دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی بانی بھی پتی تے پتنی دے رشتے نو خون دا رشتہ نہیں مندی۔ آپ کہیں دنے دھن پر اے نا آکھین، بہن اکٹھے ہوئے ایک جوت دوئے مورتی، دھن پر کئی ایس ہوئے۔ پتی تے پتنی اسنو کہیں دنے جو جوت اک ہو گئی ہے، من اک ہو گئے ہیں، باویں شریر دو نے وہ تے رہن گئے، وہ تے الگ رہن گئے، پر جوت اک ہو گئی ہے۔ باویں اوپر دو کمرے کھڑے نے پر تھلے بنیاد اک ہے، باویں نہ دو کمرے چ الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ ڈھنگ دا فرنیچر ہے، الگ الگ ڈھنگ دی سجاوٹ ہے، پر بنیاد اک ہے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج پتی پتنی دے رشتے نو خون دا رشتہ نہیں مندے۔ اور روح زمین تے یہی اوتاری پرش ہے جس نے بلند بانگ کہہ دیتا اے کوئی خون دا رشتہ نہیں ہے، اے تے ایک جوت دوئے مورتی، دھن پر کئیے سوئے، اے جوت اک ہے، من اک ہے، وچار اک نے، صرف شریر دو نے اور پریپورن پرماتما نے اس طرح دے دو شریر بنائے نے، پر من اک نے۔ مہاراج کہندے نے بھول کے بھی انہوں پتی پتنی نہ آکھنا، جو ساری زندگی ایک کوئی مکان دے چ رہے نے، پر جوت اک نہیں ہو سکی، دھن پر اے نہ آکھیں۔ مہاراج کہندے نے بھول کے بھی نہ آکھو، اے پتی ہے، اے پتنی ہے۔ دھن پر اے نہ آکھیں، بین اکٹھے ہوئے ساری زندگی اکٹھے رہے، ایک کو مکان دے چ رہے، ایک کو استھان دے چ رہے، دنیا دی نظرہ چوی اس طرح جاپے جویں کٹھے رہ رہے نے، خوش خرم رہ رہے نے، ٹھیک رہ رہے نے، پر صاحب کہنا نہیں، دھن پر اے نا آکھین، بین اکٹھے ہوئے ایک جوت دوئے مورتی، دھن پر کئیے سوئے۔ دوہاں دی جوت اک ہو جائے، وچاراں دی اتنی گہری سانج ہو جائے، ایک پتنی ہو جائے، ایک پتی ہو جائے، ایک دوجے دی پت، ایک دوجے دے ہاتھ چ ہوئے، ایک دوجے دی عزت ایک دوجے دے ہاتھ چ ہوئے، اور اپنے ہتھاں نو اتنا سنبھال کے رکھن کہ میرے ہاتھ دے وچ کسے دی پت ہے، میرے ہاتھ دے وچ کسے دی عزت ہے، میرے ہاتھ دے وچ کسے دا سکون ہے، میرے ہاتھ دے وچ کسے دی شانتی ہے، میرے ہاتھ دے وچ کسے دی زندگی ہے۔ اپنے ہتھاں نو پتی سنبھال کے رکھے اور اپنے ہتھاں نو پتنی سنبھال کے رکھے، اور اس طرح جوت اک ہو جائے تو صاحب کہندے نے اے پتی پتنی نے۔ اور یہی ایک رشتہ ہے جو دادکیاں دے رشتے نو جنم دیندا ہے، نانکیاں دے رشتے نو جنم دیندا ہے، سوریاں دے رشتے نو جنم دیندا ہے۔ یہ رشتہ ٹوٹ گیا اور یہ رشتہ ہے نہیں تو سورے کتھے، نانکے کتھے تے دادکے کتھے؟ گرو نال ہی کوئی سنبند نہیں تو رشی ہونا، سنت ہونا، بھگت ہونا، جوگی ہونا، مہان تیاگی ہونا، بیراگی ہونا، یہ سب کچھ کتھے ہے؟ یہ پرگٹی نہیں ہو سکتا، یہ اجاگری نہیں ہو سکتا۔ اور باقی رشتے جنم ہی نہیں لے سکتے جے پتی تے پتنی دا رشتہ نہیں۔ تو منکھ دے پراناں وچ بڑی پربل پیاس ہے، ایک چھوٹا جہا بچہ ہے، چاہی دیے ماں، چاہی دا پتا، پر جیسے جیسے یہ وڈا ہوندا ہے اور اس نو تنہائی اکھر دیئے تو چاہی دیئے بہن، چاہی دا گھرا، ماں باپ نال برابری نہیں کر سکدا سی، ایسا بھی چاہی دا ہے جتھے کچھ برابری محسوس ہوئے، بہن تے برا دیچ برابری ہے، بھائی بھائی دیچ برابری ہے، اور جتھے برابری نہ ہوئے اتھے انہاں نو دو برا کہنا بے مینی ہے، جتھے برابری نہیں شاید وہ بہن تے برا نہیں نے۔ ماں باپ نال برابری کرنی اوکھی سی، ماں وڈی ہے، پیو پیو ہے، اس دے ہتھاں چ پلے ہے، وڈا ہویا ہے، और उस दी असीसा नाल इसने चलना फिरना सिखया, वड्डा होया है। इदे प्राण इदे आत्मा तड़प दिए कोई ऐसा भी होवे जिन्हू मैं कह दिया ए मेरे वर्गा मेरे वर्गा है, बराबरी तू चाही दी है भैन, चाहिदा भरा बहुत वड्डी घाट रह जांदी उस मनुख दी जिंदगी च जिसका भरा ना होवे। लोकी कह देंदे ने इदियां ते बावां ही कोई नहीं, और कह देंदे ने इदी ते बहन नहीं, इदा ते कोई मान ही नहीं। भैन भरा ते मान कर दी है, भरा भैन ते मान करदा है। अक्सर ऐसा जो है देखिया गया है तो कहिंदे मान तां ही नहीं रह जांदा अगर भरा नहीं है, भैन नहीं है। नानक सास भराई, महाराज स्त्री दी उपमा इंज पे कर दें, नानक सास सबराई ए पागा वाली है, क्योंकि सबराई ए चंगे भरावां वाली है, ए मान तान वाली है, इहदे भरा ने, एवें नहीं है, इहदे भरा भी ने, इह नहीं आखे इहदे मां बाप भी ने, नहीं ए भरावां वाली है। उस स्त्री दी भारतीय समाज दे च आद काल तो मान प्रतिष्ठा बनी हुई है, कह दिता जांदा इहदे भरावां वाली है, इहदे भरा ने, एवें नहीं, इह नहीं आख्या जांदा इहदा प्यो भी है, इहदी मां भी है, नहीं। नानक सास सबराई, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने इहदे भरावां वाली है, एवें थोड़ी है। तो भरा भैण दा माण ने, भैण भरा दा माण है, भरा भरा दी बराबरी है, एक रिश्ता भी जो है चाहिदा। अगां चल के प्राणा दे च इक होर प्यास पैदा होंदी है, एक उमंग पैदा होंदी है, विपरीत दी कशिश, जिसनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल उजागर कीता है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, ऐ दुनिया दे ब्रह्म ज्ञानियो एक गल नू समझो, एक गल नू जानो, कोई पुरुष पूर्ण तौर ते पुरुष नहीं, उस दे अंदर अद्धी स्त्री बैठी है, कोई स्त्री पूर्ण तौर ते स्त्री नहीं है, उस दे अंदर अधूरा पुरुष भी बैठा है। अगर मां बाप तो ए शरीर आया है, तो इस शरीर दे कुछ मां दी अंश है, इस शरीर दे कुछ पिता दी अंश है। कोई पुरुष हो गया तो मैज इस वास्ते हो गया है, पिता दी अंश इस दे ज्यादा है, मां दी घट है। और कोई स्त्री हो गई है, कोई लड़की हो गई है, वो मैज इस वास्ते हो गई है कि इस दे स्त्री दी अंश मां दी अंश ज्यादा है, पिता दी घट है। लेकिन कोई ऐसा पुरुष नहीं जिस दे अंदर स्त्री नहीं, और कोई ऐसी स्त्री नहीं जिस दे अंदर पुरुष नहीं। तो इत्थों एक विचार चली कि हर पुरुष दे अंदर स्त्री अर्ध अंग विच है, अधूरी है अंदर, और हर स्त्री दे अंदर पुरुष अर्ध अंग है, अर्धांग नहीं। स्त्री नू पुरुष ने अर्धांग नहीं आख्या, ए गल वखरी है कि स्त्री दी दृष्टि च और स्त्री दे संसार दे च पुरुष भी अर्ध अंग है। कारण पुरुष दे अंदर, स्त्री दे अंदर भी जो पुरुष है वो अधूरा है, ए अधूरा पुरुष संपूर्ण होना चाहता है, और पुरुष दे अंदर वो जड़ी अधूरी स्त्री है वो संपूर्ण होना चाहती है। अंदरों इसनू पूरा करना प्रकृति ने कोई साधन नहीं बनाया, इसनू बाहरों पूरा करना पैंदा है, और इसे ही पूर्ण करन नू ही विवाह ते आनंद कारज कहंदे ने, शादी कहंदे ने। अधूरी स्त्री अज संपूर्ण होण लगी है, अधूरा मनुख अज संपूर्ण होण लगा है, वो अर्ध अंग अज संपूर्ण अंग हो गई, और वो अर्ध अंग जो पुरुष सी अज संपूर्ण होया। शायद इसे वास्ते बहुत वड्डी खुशी मनाई जांदी है, अधूरा संपूर्ण हो गया, अधूरा अज पूरा होया। दरअसल स्त्री अज संपूर्ण हुई है और पुरुष अज संपूर्ण होया, तो संपूर्णता होनी एक बहुत वड्डी खुशी है। संसार दे तल देते ए संपूर्णता है, और संपूर्णता बहुत वड्डी खुशी है। सारी दुनिया दे च मनुखी जगत दे च इस खुशी वर्गी होर फिर कोई खुशी नहीं है। समझ लो सारिया खुशियां इस एक खुशी दे आले दुआले परिक्रमा कर दिया ने, घूमदिया ने, और प्रार्थना कर दिया ने। ए मूल खुशी है, ए बुनियादी खुशी है। और अक्सर ऐसा जो है देखते हैं ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਬਾਲੀ ਇਹ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਜੋ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਸ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਅੰਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੂਰੀ ਅੰਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਸ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਸਤਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰਾਪਣ ਰਹੇਗਾ, ਖਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੋਝ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਕੋ ਅਤ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇਹ ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਪਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਪਿਓ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਛਲਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਮੜਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਰਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਬਤ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਚ ਉਸ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। और सिर्फ घर नहीं परिवार भी चाहिए, अगर परिवार नहीं तो घर ही नहीं, घर देच ओ भी चाहिए जिसनु कहा जाए घर वाली, घर देच ओ भी चाहिए जिसनु कहा जा सके घर वाला, घर वाला ही नहीं है, घर वाली ही नहीं है तो घर का दा घर की है, कोई इट्टां दी ढेरी नु घर थोड़ी कहंदे ने, कोई पत्थरां दे इकट्ठ नु घर थोड़ी कहंदे ने, नहीं घर है तो इस दी शोभा है घर वाले नाल घर वाली नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा ए जो तेरी मेरे ते निगाह हो गई है, ए जो तू मेरे ते अपनिया निगाह सुट दितियां ने, ए जो मैं तेरी निगाह दे थले आ गया, ए मैनु सुंदर महल दी प्राप्ति हो गई है, परिवार दी प्राप्ति हो गई है, घर दी प्राप्ति हो गई है, हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार। दरअसल मनुख दे प्राणा दे च ए भी प्यास है कि मैं घर दे च जो कुछ आखा मेरी गल ठुकराई ना जाए, मेरा बोल काबले कबूल हो, मां नू पिता नू पत्नी नू पुत्रा नू भरावां नू भैणा नू कम से कम मेरी गल रद्द ना कीती जाए। साहिब कहिंदे ने हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार, ऐ मेरा हुक्म करना है केड़ा जिड़ा तेरे हुक्म नू पा जाना है, जिड़ा तेरी रजा दा मैनू चंगा लगना है, जो तेरा हुक्म मैनू चंगा लगन लग पे है, मानो यही मेरा हुक्म पे चलदा है, यही मेरी गल पे चलदी है, मेरी गल कोई रद्द नहीं करदा। दरअसल एक बहुत वड्डी सच्चाई अध्यात्मक दुनिया विच प्रगट होंदी है उस दिन, जेड़ा मनुख परमात्मा दा हुक्म मनदा है जगत उसका हुक्म मनदा है, और जो परमात्मा दे हुक्म नू एक पासे कर देंदा है उस मनुख दे हुक्म नू भी दुनिया बहुत चिर तक मन नहीं सकदी, ओनू भी नजरअंदाज कर दिता जांदा है, उसनू भी एक पासे सुट जांदा दिता जांदा है, जो उस एक दा हुक्म मन लैंदा है उसका हुक्म सारी कायनात ते चलदा है। तो हुक्म सोई तुद भाव सी और आखण बहुत अपार, और ते बहुत कुछ कहना है बहुत कुछ कहना है, पर हे परिपूर्ण परमात्मा वास्तविक तेरी रजा विच राजी रहना, तेरे हुक्म नू जो है चंगा समझ के ओनू अपने अंदर धार लेना, तेनू पा जाना, बस यही अपनी गल दा चलाना है, यही जो है असी अपना हुक्म चलांदे आ। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार, ओ परिपूर्ण परमात्मा सच्चा है मालिक है पातशाह है, ओ किसी कुल पुछ पुछ के बख्शिशा नहीं देंदा, देई जांदा है देई जांदा है, किसी खेत कुल बदल पुछदे नहीं बरसीए के ना बरसीए, किसी घर कुल सूरज पुछदा नहीं रोशनी देईए के ना देईए, किसी घर दे कोलो चंद्रमा पुछदा नहीं मैं अपनियां किरणा खिलेरा के ना खिलेरा, और किसी मनुख कोल पवन पुछदी नहीं तेनू छुआ के ना छुआ। महाराज कहिंदे ने इस तरह परमात्मा पुछदा नहीं, बिना पुछिया ही सब कुछ देई जांदा है, बिना पुछिया ही सब कुछ वंडी जांदा है, बिना पुछिया ही सारियां नियामतां झोली दे जो है पाई जांदा है। आखरी रहाओ चौथा रहाओ, बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है मन में चले विकार। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक इत्थे सौण दे अर्थ ने ऐशो इशरत, परिवारिक ऐशो इशरत, परिवारिक सुख साधन, परिवार दा सारा सुख दा माहौल। बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़िए मन में चले विकार। होर सोना होर ऐशो इशरत, इस तो इलावा जो सतगुरु देव जी महाराज ने सवाग दे दसी, इस तो इलावा जिहड़ी ऐशो इशरत है महाराज कहिंदे ने तन नूं पीड़ित कर देंदी है, मन नूं रोगी कर देंदी है। ए पावन पवित्र वाक धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ऐसा है, चार रहावां दे च जिंदगी दे मूल सिद्धांत सारे दे सारे बयान कर दिते ने, और तय दिल नाल जो इन्हां नूं हिरदे दे च वसा लवे लोक परलोक उसका सुहेला हो जाता है, तन दे तल ते अरोग रहिंदा है और मन दे तल ते आनंदित होंदा है, इस तरह उसका लोक परलोक सुहेला हो जाता है। और ये पंक्ति उस दे पूरी उतरदी है, ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोलय

다는 걸 원칭지 말아이다. 혹은 레헷 베아리 모지코 시크 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए रहनी दो तरह की मानसिक ते शरीरक मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ जपजी साहब जाप साहब सवैये चौपाई आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समय ये मानसिक रहत है तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है मन करके सिख बने तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख रहत नाम इस तरह के बोलने ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो जिमें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही अगरिस्ता करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है अगां फरमान कर देने तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने मानो खोते नु इशनान कराया गया फुलां दी माला पवाई गई है चंदन आदक लाया गया है बस खोते ही रख होता है सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर प्रमाण निशाने सिखी ई पंज हरफ का जिथे हिरदे दी बनावट बनेगी बाणी नाल मूल मंत्र दे जप नाल गुरमंत्र दे जप नाल उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इना पंच ककारा नाल कक्का के

उस समय तू संघर्ष करके प्रभु दा जो है चिंतन कर सके। ए समा ए वक्त मदद करता है, जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहे है, पर एक ने सिर ते एक मन दा वजन रखे होया है, तो कठिन होवेगा उसनु जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा, वो समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसकी महिमा गायन करदे होया कहा है, दुनिया दिया सारिया बरकतां उस मनुख दे झोली विच आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरु नाम दा अभ्यास करता है, वाहिगुरु नाम दा चिंतन करता है। इस चिंतन द्वारा उसका प्रभु नाल संबंध जुड़ता है, ते प्रभु नाल संबंध जुड़न दा मतलब की है, महाशक्ति नाल संबंध, और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़ता है, महाशक्ति उसके अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर नाल जुड़िया होया मनुख कमजोर नहीं हो सकता। तिथे जोद महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर, जिन्हां दे अंदर राम भरपूर होके समा जांदा है महाबली आउंदे ने, योद्धा आउंदे ने, सूरबीर आउंदे ने, और अमृत वेले दी इस बरकत नूं प्राप्त करके महान योद्धे ओह बन जांदे ने। चौथे पैरे सुभा के सुरतियां उपजे चाव, तिन दरियां वासों दोस्ती मन मुख सच्चा ना। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, जो गहरे तल दे प्रभु चिंतन करन वाले ने, विचारक ने, दार्शक ने, रात दे चौथे पैर उन्हां दे अंदर उमंग पैदा हो जांदी है, तरंग पैदा हो जांदी है। चौथे पैरे सुभा के सुरतियां उपजे चाव, तिन दरियां वासों दोस्ती मन मुख सच्चा ना। उन्हां दी दोस्ती इशनान नाल हो जांदी है, उन्हां दे मन विच और उन्हां दी रसना विच मुख विच परमात्मा दा नाम होंदा है, सच नाम होंदा है। इस नाल वो अपने मन नाल संघर्ष करदे ने। दरअसल परम पद दी प्राप्ति मन नाल संघर्ष करके जितन तो बाद ही प्राप्त होंदी है। जो लोग ऐसा नहीं करते, संघर्षमयी बिरतियां विपरीत दिशा दी ओर चल पैंदियां ने। जो इस समय तो लाभ नहीं उठांदे और मन तो पार होके परमात्मा दे अस्थान ते नहीं पहुंचना चाहते, तो बिरती दा प्रवाह, जीवन शक्ति दा प्रवाह विपरीत दिशा दी ओर चल पैंदा है। ऐसे मनुख मन नाल संघर्ष ना करदे होए समाज नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने, कानून नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने। संघर्ष करन दी बिरती ते मनुख दे अंदर है। समाज नाल संघर्ष करना है, संसार नाल संघर्ष करना है। अक्सर ऐसे लोगां नूं रात चाहीदी है, रात दी तारीकी चाहीदी है, पर मन नाल संघर्ष करना है उजाला चाहिदा है। अमृत वेला दिन दी शुरुआत है और संध्या शाम दी रात दी शुरुआत है। कदी गौर नाल देखिए, जिथे मनुख अपनी जिंदगी दे सवेर लेना चाहता है, चानना लेना चाहता है, धार्मिक मंदरां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने। मस्जिदां दे दरवाजे, मंदरां दे दरवाजे, गुरुद्वारियां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने। पर जो अपनी जिंदगी नूं तारीकी नाल भरदे ने, अचेतपना अपना वधांदे ने, मन नूं बेहोशी दी दुनिया च लै जाके तारीक मंडलां विच पहुंचदे ने, ऐसे सथलां दे बूहे दरवाजे अक्सर रात नूं खुलदे ने। शराबखाने ने, जुए घर ने, वैश्याले ने, क्लब थिएटर ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, रात दी तारीकी दी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी ने सारे जीवन नूं मंडिया है और आप कहिंदे ने कुछ तारीकमई है, कुछ प्रकाशमई है। कुछ प्रकाश दी ओर जा रहे है, कुछ अंधकार दी ओर जा रहे है। कोई प्रकाश दा प्रेमी है, कोई अंधकार दा प्रेमी है। ऐसा सिर्फ मनुखी दुनिया च नहीं, पशु पंखियां दे च भी है।

और अपनी दृष्टि के मुताबिक ही मनुख संसार नूं वेखदा है, निरंकार नूं वेखदा है। एक तस्वीर दे के अगां चलांगे, एक दरखत दे थले पंज सत मनुख विश्राम कर रहे ने दोपहर दे वक्त। उन्हां दे चों एक नृत्यकार है, एक संगीतकार है, एक उदासी संत है, एक नौजवान है जिड़ा हुणी किधरे घरों लड़के आया है, बड़ा दुखी है, बहुत बेचैन है। आराम कर रहे इन्हां मनुखां विचों एक लक्कड़ दा व्यापारी है। हवा दे तेज झोंके जो दरखत नाल छूंदे ने, दरखत दियां टहनियां झूलदियां ने, जिड़ा नृत्यकार सी वह नृत्य की दुनिया में खो जाता है। वो कहिंदा है कि मैथों भी ज्यादा यह सुंदर दरख्त नृत्य कर रहा है, इहदी शाखां विच कितनी लचक है, इहदे पत्ते किस ढंग नाल झूम रहे हैं। नृत्य वेख के दरख्त का वह नृत्यकार बिस्मात की दुनिया च खो जाता है, उन्हों दरख्त नचदा होया प्रतीत होंदा है। दूसरा संगीतकार है, जद पवन दे तेज झोंके दरख्त नाल स्पर्श करदे ने, शां शां दी आवाज बुलंद होंदी है, उह संगीतकार सरगम दी दुनिया च खो जांदा है, सुरां दी दुनिया च खो जांदा है, संगीत दी दुनिया च खो जांदा है, बिस्माद हो जांदा है। कहिंदा है सिर्फ मैं ही नहीं गाऊंगा, यह दरख्त भी गाऊंगा, गीत संगीत इहदे विचों भी निकलदा है। नृत्यकार नूं ऐसा प्रतीत होया दरख्त नच रहा है, पर संगीतकार नूं ऐसा प्रतीत होया जैसे पत्ते पत्ते दे चों संगीत दा जन्म हो रहा है। उदासीन महात्मा लेटे होया है, वह देखदा है दरखत दी तरफ, एक सुक्का पत्ता तेज हवा दे झोंके नाल टुट के जमीन ते आ गिरदा है। अखां दे हंजू आ गए संत दे, और कहिंदा एक दिन संसार दे दरख्त नालों मैं इस तरह टुट जावांगा जिवें कि पत्ता टुटे, जिवें हुण पत्ते दा जुड़ना इस दरख्त नाल बड़ा औखा है, तिवें मरे हुए मनुख दा मुड़ के कुटुंब संबंधियां नाल संसार नाल जुड़ना बहुत औखा है, बहुत औखा है। होर बैराग दी दुनिया च खो गया, होर संसार तो उपराम हो गया, बई इत्थे ते सारे पत्ते झड़ जांदे ने, इत्थे पत्ते सदीवी दरख्त नाल नहीं रहिंदे, एक एक करके सारियां नूं झड़ना पैणा है। इस वास्ते किसे परम खोज किसे परम देश दी अंदर तलब रख के अगम्मी दुनिया विच खो गया ये संत। चौथा जो लेटे होया आराम कर रहे इस दरख्त दे थले, वो एक व्यापारी है लक्कड़ दा। वो इस सोचां विच गलतान हो गया कि इस दरखत नूं अगर मैं खरीद लवां इहदे च इमारती लक्कड़ कितनी निकलेगी, इस विच जलाऊ लक्कड़ कितनी होवेगी, और इस विच जिहड़ा बाकी दा मलबा है शाखां इहदा कोला बन सकेगा कि नहीं, मैं किन्ने दा यह दरख्त खरीदा, यह कितने दा बिकेगा, मैनू की कुछ बचेगा। दरख्त नूं वेख के व्यापार की दुनिया विच खो गए। पंजवा जो आराम कर रहा है एक नौजवान है, हुणे हुणे घरों लड़के आया, हवा दे तेज झोंकियां नाल जद शाखां शाखां नाल टकरांदियां ने, पत्ते पत्ते नाल टकरांदे ने, खड़ाक पैदा आउंदा है। कहिंदा है झगड़ा तो इत्थे भी शुरू है, शाखां शाखां नाल लड़ रही ने, पत्ते पत्ते नाल लड़ रहे ने, सिर्फ साढ़े घर दे ची लड़ाई नहीं, ऐसे दरखत दे ची भी बहुत वड्डी लड़ाई है। हुण जैसी जैसी दृष्टि है मनुख दी, वैसी वैसी सृष्टि दिखाई देंदी है। दरखत इक्को ही है पर सारियां नूं वख वख रूप करके प्रतीत हो रहा है। संसार ते एक है लेकिन नजरां वख वख होण करके नजारे वख वख दिखाई देंदे ने। जैसी सृष्टि आउंदी है, जैसी दृष्टि आउंदी है, वैसी ही मनुख दी सृष्टि बन जाती है। वख वख सृष्टि करके परमात्मा दे अनेका रूप जगत दे च प्रचलित होए। इस्लाम ते ईसाईयत ने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं पिता करके आखे।

अंश शरीर देह मौजूद है। अस्थूल रूपनों संपूर्ण करना जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया उस दाना आनंद कारज विवाह निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली, इति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, इति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया, पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च, वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है, देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन देच वंडे पैन है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है, गुरबाणी ने ज्ञान नो पुरुष आख्या है, भक्ति नो नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरआणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है, ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, ज्ञान नो राव आख्या पुरुष आख्या। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष के अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री के अंदर। मन दा टिकाओ भावना लौंदा है, मन नु सूझबूझ ज्ञान नाल मिलदी है, तर्क नाल मिलदी है। तर्क स्त्री के अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष दे अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष दे अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी, स्त्री दे अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उथे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बह बलौंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा, परिवार दा चलना ही संसार दा चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देइए, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उना नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूह दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकदा है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकदा। सारे ही त्याग कर देने स्त्री दा, और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म हो। जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्त ही खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नु चलायमान रखना चाहती है, ये ताई चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहा है तो संसार चलेगा, और परिवार चलता है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे

माता गंगा जी हाथ जोड़ के खलो गए, कह लगे साईं वालियो तुहाडी पहुंच साईं ताके। असलियत साहब ने बाणी विच मने है कि जाका मीत साजन है सच समिया, तिस जन को कहो कांकी कमिया, जाकी प्रीत गोबिंद च्यों लागी, दुख दर्द प्रमता का भागी। ते जेड़े साईं वाले ने ना जाका कया दरगाह चले, ओदी गल नूं किवें झूठिया करना, सो किस को नजर लै आवै तले। साहब कहने जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे नानक दास मुकते जो बोले। सच होवे सिख दा बचन कभी झूठा नहीं, खोवे पुगया खोवे पहुंचया। साहब कहने भगत मुखे ते बोल दे से बचन होवन दे, जो कुछ उन्हें बोल देना सके। हाथ जोड़ के क्या बाबा गुरु साहब ने तेरे को तेरे दर ते भेजे है। बाबा जी अदब नाल उठ पे, कह लगे मां मेरा गुरु नानक दे घर तो बिना कोई नहीं हूं। साथी जिद्दत दा गुरु नानक नूं मिलिया उस दिन तो बाद किते गया नहीं। तू मेरे अगे हाथ ना जोड़, मैं ता गुरु नानक दे दर दा ताई हां, ते मैं चाहना सारी जिंदगी मैं ताई बन के रहा। कह लगे दस मेरे लिए तू हुक्म है की कर सकना। कह लगे सतगुरु ने कहा तुसी अरदास करो, मेरी कुख नूं भाग लगे, मैं पुत्र दी दात मंगण आई हां। बाबा बुढ़ा जी ने जदों इन्ने शब्द सुने, कह लगे मां सिर्फ तेनू एक भुलेखा पाई, देन वाला तां ओही है। कहिंदा मेरे वर्गे ताई नूं केवल निवासदा पिया है, दात तेनू उसे दर तो मिलनी है। मैं कालब लिखदा उस वक्त बदल चमकिया, बिजली जड़ी है ओ चमकी बदल गजया। ते बाबे बुढ़े ने हस के कहा मां आ देख जदों बदल चमकदा है ते ए भी चमक लोकां दियां अखां नूं चुंधिया देंदी है। तेरे घर विच जिस पुत्र ने पैदा होना है, जिदन ओने म्यान विचों कृपान कढ़ी ओदी लिस्क दी कृपान जड़ी है दुश्मनां दियां अखां नूं चुंधिया दे। तेरे घर विच बली जोधा पैदा होवेगा। आ प्याज वाली भी घटना के मुक्की भर के भन के कहा कि मां जिवें ए प्याज ए गंढा भन्या तेरा पुत्र दुष्टां दे सिर नूं भन्नेगा, दुष्टां नूं खत्म करेगा। कहिंदे ने माता ने अरदास कराई, सिख संगत विच खबर फैल गई कि बाबे बुढ़े ने अरदास कीती है। एक आवाज आई कि बाबे बुढ़े दा बचन कदी झूठा नहीं हो सकदा। माता गंगा जी वापस आए, सतगुरु अमृतसर तो वडाली आ गए, जिन्हों आपां अज गुरु की वडाली कहने हैं। इत्थे आए ने जून दा महीना आया ते कहिंदे ने ओ सुलखनी घड़ी आ गई। बाबा बुढ़ा अज भी बीड़ साहब है, अमृत वेले मेरे मालक ने मेरी कृपा की, जिस गुरु का पुरब आपा मनाने हैं गुरु हरगोबिंद साहब का आगमन हो। जद सतगुरु गुरु अर्जन देव नु खबर दिती दातिया तेरे घर अंदर वाहगुरु ने पुत्र की दात दिती, ते साहब ने कहा सतगुरु साचे दी हते किन्ने उन्हें भेजे कि जीवन उपजिया संजोग, उतरा मैं आए किया निवास, माता के मन बहुत विगास, जमया पूत भगत गोविंद का। कह लगे जेड़ा साडे घर पुत्र पैदा होया ए रब दी भगती वाला पैदा होया, ते वेखो पुत्रां दी दात असी भी मंगने हैं, पर मेरे गुरु ने कि हो जा सुपना लिया। ते बाणी विच क्या लोकां ने क्या दाता तेरे घर अंदर पुत्र चलिया तेरी पीढ़ी अगे तुर पई। मेरे साहब ने कहा कल्ली पीढ़ी नहीं, मेरा पुत्र धर्म दी ओ मर्यादा कायम करेगा जेड़ी रही दुनिया तक गुरु नानक दे घर विच कायम रहेगी। इत्थे साहब ने कि शब्द वरत्या कहन लगे वधी वेल बहु पीढ़ी चाली, ठीक है पीढ़ी भी चली पर धर्म कला हर बंद बहाली वो एक मर्यादा कायम करेगा। साध संगत जदों गुरु हरगोबिंद साहब का आगमन होया साहब ने कहा गुरबाणी सखी गावे, उदो बाणी गाई गई आ टप्पे नहीं आ खुसरे नहीं मिटाए गए, शब्द गायन कीते गए कीर्तन कीता गया। अज साडे लोकां दी बिरती है ना मैं खिन विचों निकल लगा गल करनी चाहीदी है, गुरु दे घर जे पुत्र दी दात दिंदा तां वी मेरा गुरु उस गुरबाणी नाल जुड़दा, जे किते पुत्र चलाना भी कर जांदा गुरु हरगोबिंद साहब दे घर विच अकल तां वी बाणी दी गल करदा। पर साडे लोकां नूं टको सवेरे अखंड पाठ कराणगे, लंगर भी चलदा होवेगा, ते शाम नूं उसे पुत्र नूं लै के बकरे बुलांदे होणगे

सुत दारा शों प्रीत लगाय। एक उत्तम पंथ सुनहो गुर संगत, तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पात कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाय। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूरख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता,

में तेरे कर दौलत की कमी नहीं, खुशन की कमी नहीं, पर की तेरा मन कदी भटक गया नहीं खुशन से दौलत नू देख के। ते साहब ने एक गल कही सी, जहांगीर जिदे सिर ते मौत फूकदी होवे ते जिन्नू रब ने अपने नाम दे खजाने दे दिते होण, ओदियां अखां कदी बाहर दी सुंदरता विच भरमदियां नहीं। कहन लगे, सुंदर बनाने वाले वल तकना वा, मैं तस्वीर नू नहीं, चित्र नू नहीं, उस चित्र नू चित्रन वाले चितेरे वल झाती रखना वा। इथे माता गंगा जी दे चरणा विच जहांगीर झुकया। ते एक गल मां ने कही सी, जहांगीर लेखे ता रब दी दरगाह विच होने ने, खुदा करेगा इंसाफ झूठ की ते सच की सी। इथे जहांगीर ने दिल्ली तो चंदू नू गुरदेव दे हवाले कर दिता सी। साहब ने इथो गिरफ्तार किया है। भाई बिधी चंद ने नक विच नकेल पा के इनू लाहौर तक लैके गया। खैर मैं अर्ज करा, गुरु हरगोबिंद साहब इन्हां कोल नूर जहां भी आके झुकीए। साहब सच्चे पिता महाराज आप अमृतसर दी धरती ते टिक गए। बादशाह जहांगीर दी मौत हो गई है। इस सुखेवे समय साहब ने अपने प्यारियां नूं नवाजिया। पीलीभीत गए, डरौली गए, भाई साधु रूपे नूं नवाजिया, बेअंत सिखां ते किरपा कीती। इथे गुरु हरगोबिंद साहब अमृतसर ने ते बादशाह जहांगीर दी मौत हो गई है। ते ओदा पुत्र शाहजहां तख्त ते आए। इधर गुरु हरगोबिंद साहब पूरी तैयारी कीती है। चार जंगा मेरे गुरु हरगोबिंद साहब ने लड़िया ने, चारे जंगा विच जित होई है। मैं जंगा दा जिक्र कर दिया। पहली जंग अमृतसर दी है। इस जंग दा कारण की, इधरों लाहौर दे हाकम भी शिकार खेडन आए ने, ते इधरों गुरु के सिख भी शिकार खेडन गए ने। लाहौर दे हाकमां दा बाज गुरु के सिखां दे हाथ विच आ गया। उन्हां ने उस बाज नू अपने कब्जे विच कर लिया है। ते कहिंदे ने हाकम आए बाज खोणा चाहुंदे ने। भाई वीर सिंह लिखदे ने, शिकार दी एक नियम एक रीत है कि जे किसे कोल उड़दा पंछी किते काबू आ जाए ओदा हक है। इन्हां ने कहा साडा बाज वापस करो। ते सतगुरु के सिखां ने इनकार कर दिता। उन्हां ने एक गल कही, तुहानू पता नहीं कि तुसी बादशाह दी राया हो, ओदी सल्तनत हो। अगो सिखां ने आवाज दे के कहा, नहीं असी तां गुरु नानक दी राया वा, ना के किसे दुनिया दे बादशाह दी। उन्हें कहा, जंग दा पता जे? सिखां ने कहा, असी तां किन्ने देर दी तैयारी करके बैठे हां, कोई साडे वल आवे तां सही। बाज लैके वापस आए। हाकम लाहौर गए ने। उन्हां ने मुखलिस खां नूं जाके एक गल कही सी, अज सिखां ने साडा बाज खोया है। ते विचलियां ने एक गल कही, जिन्हां ने अज बाज खोया है इह कल नूं ताज नूं वी हथ पाणगे। अज बाज कल नूं ताज खोणगे। पहली लड़ाई दा कारण केवल एक बाज सी। जे कोई सियाणा कहे, लो जी एक पंछी पिछे लड़ पए, गल पंछी दी नहीं, गल जमीर दी स्वतंत्रता दी है, गल गुलामी दियां जंजीरां कट्टण दी है। उधर हाकम हजारां दी तादाद विच आए ने। ते गुरु हरगोबिंद साहब नूं पता है कि बाज लियांदा होया हुण कम खाली जाणा ने। सतगुरु ने तैयारी कीती। जिथे पिपली साहब अस्थान है इथे नाके लाए ने। सिखां ने कह दिता, महाराज कि हाकम चढ़ के आ गया। तीजे दिन जिवें अज जांगे ते परसों बीबी वीरो दी शादी है। सतगुरु ने अपने सिखां नूं भेजिया, मोर्चे बना के सिख लड़े ने। चेते रखियो हिंदुस्तान दे इतिहास विच राजे महाराजे तां इक दूजे नाल लड़दे रहे ने, पर ए पहली लड़ाई सी कि आम जनता जाग उठे ते हकूमत दे बर खिलाफ लड़े। पहली जंग सी अमृतसर जी, जदों दबे हुए लोग उठे ने ते बादशाह दे विरुद्ध उन्हां ने शस्त्र चुके। इथे लक्कड़ दी तोप चली। मेरे गुरु हरगोबिंद साहब दे सिख विद्वान कहिंदे ने 13 सिख शहीद होए ने। कोई 13 दी गिनती करदा, कोई वध करदा। जदों सतगुरु जित गए ने, सारे परिवार नूं चबाल भेज दिता है। भाई लंगाह दे कोल उस ढिलो सरदार दी बड़ी वड्डी कुरबानी है। ओदे खानदान दे विचों बघेल सिंह होया जिन्हें दिल्ली लाल किले ते केसरी निशान चुलाया। उन्हें अपने घर रखे। अज ओ अस्थान है चबाल जिथे बीबी वीरो दा आनंद कारज कीता गया, लावां कीतियां गईयां। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जदों जंग जीती फिर अपने शहीद सिखां दे कोल गए ने। एक एक सिख दे चेहरे नूं पूंजिया ते प्यार नाल भिज के कहा, प्यारियो सचखंड परवान तुरे जांदे ने।

चित्त मरता मरता जग मुआ, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर्त ही ना जानिया कोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो।

अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी भी सच सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दिना